0: शीश निवाये कथिए दरिदे कुसुते जय महला पहला।
1: पढ़ पुस्तक संध्या बादंग सिल पूज बगल समादंग चूठ वोखन सारंग त्रिपाल तिहाल विचारंग माला तिलक लाटंग दो तोती बस्तर कपाटंग जय जारंग ब्रह्मं कर्मंग सब फोकट नेचो कर्मंग कौनान नेचो त्या वेन सतगुरु वाट न पावे पौड़ी कपट रूप सुहावना।

जुमला फैज़ नूरा गुरु गोविंद सिंह मान करो तदुपरे मेरे प्रीतम प्यारे हम अपराधी सद भूलते तुम बख्शन हरे जेता समुंद सागर नीर भरिया तेते अवगुण हमारे दया करो किस मेरु पाबो डबदे पत्थर तारे कृपा करो हो दीन के दाते मेरा गुण अब गुण ना बेचारे कोई माटी का क्या तो पै स्वामी

नानक किसनो बाबा रोई भाजी है हो संसारो किता वेख साहिब अपना कुरत करे बेचारो कुदरत बेचारे तारना तार जिन किया सुजाने आपे देखे आपे बुझे आपे बुझे आपे हुक्म पसाने जिन किस किया सुई जाने ताका रूप अपारो नानक कृष्ण बाबा रोई है।

संगत कै अंचल लावो बिखम नदी जाहे तरनी हम बारिक कछु न जाने गत मित तेरे मूरख मुगद यन हर कृपा तार दीजै मत उत्तम कर लीजै मुगद सियन तुमरी शरण तुम्हारी आशा तुम ही सज्जन सोहेले राखो राखन हार दयाला नानक करके गोले दंडौत बंदन अनकवार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ। परम सत्कार योग धन धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दे पावन पवित्र चरणा च गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब पवित्र स्थान दियां हाजरियां भर रहे गुरु प्यारे सत संगी जनों सतगुरु महाराज दी पावन हजूरी विच जुड़ बैठ अदब प्यार सत्कार दे नाल कीर्तन रूप विच गुरबाणी दा लाहा प्राप्त कीता है। लड़ीवार गुरबाणी शब्द विचार अज दे अमृतमई बचना दा पाठ पावन शब्द भाई साहब जी पासो सरवन कीता पवित्र बाणी दी विचार दे नाल जुड़न वास्ते मन बिरतियां नू एकागर करन दा यतन करिए। सतगुरु जी अज दे शब्द राही मनुखी दुनियावी जीवन नू जो समझाउणा चाहुंदे हन एक मन एक चित हो के समझण दा

आप जी रोजाना इस अस्थान तो अमृतमयी बाणी दी लड़ीवार शब्द विचार दा लाहा प्राप्त करदे आ रहे हो। वडहंस राग दे विच गुरु नानक साहब जी वल्लों जो पावन शब्द उचारण कीता, जिस विचों पहले दो पदियां दी विचार कल दे दीवाना विच आप जी सरवन कर चुके हो, अज तीसरे और चौथे पदे दी विचार गुरु महाराज जी दी कृपा दे सदका करनी है। गुरु नानक साहब जी बख्शिश कृपा वरतौंदे ने, मरण मुनसा सूर्या हक है, जो होए मरे परवानो। सूरमियां दा हक है कि ओ भावें बाहर दा सूरमा होवे ते भावें मन दा सूरमा होवे, दो महाराज जी ने सानू गुण दिते ने, एक मीरी और एक पीरी दा गुण। मन दे तल ते भी महाराज ने सानू सूरमा बनाया और तन दे तल ते भी सानू सूरमा बनाया। सूरमा भावें मन दा होवे भावें तन दा होवे, सूरमे तो भाव बहादुर योद्धा, ते जेड़े योद्धे हुंदे ने सूरमे उन्हां दा ये हक है जूझना लड़ना और मरना। असी मन दे तल ते भी सूरमे बन के अपने आपे नू मारना है और असी तन दे तल ते भी सच और हक दी खातर जूझदियां होया अपना आपा कुर्बान करना है। जे बाहर दे असी सूरमियां दा इतिहास योद्धियां दा इतिहास देखांगे ते शहीदां दे नाल कुर्बानियां दे नाल इतिहास भरिया पिया है और एक एक दिन दे विच हजारां हजारां बहादुर योद्धियां ने शहादतां दित्तियां ने, कुर्बानियां दित्तियां ने। साढ़े वास्ते तां एक साल दे 365 दिन तां बहुत थोड़े ने, साल दे विच 365 दिन हुंदे आ पर इतिहास दे विच एक एक दिन विच हजारां हजारां सूरमियां ने शहादतां दित्तियां ने। हुण दोवां दी गल आपां अज समझणी गुरु किरपा दे नाल, ते दोवां दा जिक्र महाराज जी ने कीता है, जां को हर रंग लागो इस जुग में सो कहियत है सूरा। ये मन दे तल ते है और जिहदे कोल तन करके सूर वीरता है, बहादुरी वाले गुण ने, योद्धा है। सूरा सो पहचानियै जो लड़ै दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरै कबहू ना छाड़ै खेत। वो अपना पुरजा पुरजा ते अंग अंग ते कटवा दिंदा पर वह मैदान नहीं छड़दा। ये सूरवीरता, ये बहादुर योद्धियां दे गुण ने। पहला महाराज कहिंदे तू मन करके सूरमा बन, क्योंकि पहली तेरी जंग जिहड़ी है वह अंदर दी है। मन करके तू जितना है, पर तेरे मन दी जिहड़ी जंग है वह इस तरह है कि इकला तेरा मन है जिन्हें इस मैदान दे विच जूझना और पूरी दुनिया दे नाल जिवें लड़ना होवे, इस तरह दी ये जंग है। मन जीता है जग जीत, मन दा जितना इस तरह है जिवें पूरी दुनिया दे उत्ते जित प्राप्त करनी है।
गुरु नानक साहब दे घर विच गुरु महाराज दे दर ते आके भी असी अपना आपा मिटाउणा है, क्योंकि पहली शर्त ही यह है कि पहला मरन कबूल, जीवन की छड आस, हो सबना की रेण का तव आओ हमारे पास। अपना आपा मारना पेगा ता जाके असी ओ सूरमे बन सकते हैं जिड़े सच और हक दी खातर जूझ सकते हैं और कुर्बानियां दे सकते ने, क्योंकि उन्हां दा हक है। वैसे इत्थे हक दा अर्थ है सच। मरन मुनसा सूरिया हक है, सूरमियां दा मरना ये एक सच है, एक सच्चाई है। तुसी संसारक पक्ष देखो दुनिया वाला, ते अक्सर लोग एक गल कहिंदे आ कि सच नूं ही फांसी लगदी है, क्योंकि समाज दे विच कूड़ है, झूठ है, विकारां नाल भरिया होया संसार है, इसलिए चारे पासे कूड़ ही कूड़ वरत रहा है। ते जे कोई सच बोलण दी हिम्मत करदा है उनू फिर कुर्बानी देनी पैंदी है, उनू फिर शहादत देनी पैंदी है। पर जदों असी वाहिगुरु दे घर दी गल करांगे, परमेश्वर दे मिलाप दी गल करांगे, उत्थे भी सानू सूरमा बन के पहले तो इन्हां विकारां नू मारना पएगा, फिर सानू अपना आपा मारना पएगा। सतगुरु महाराज जी सानू गुरबाणी विच समझाउंदे आ कि मन दे तल ते सूरमा किदां बनना है। साहब कहिंदे अखी बाजों वेखणा विण कन्ना सुनना, इन्हां अखां नू मारना पैणा है, इन्हां कन्नां नू मारना पएगा बुरियाई वाले पासिओं। पर रूप, पर धन वाले पासिओं, पर मतलब पराया, जिदे ते मेरा हक नहीं है, पराया धन, पराया रूप, इहदे वल्लों अपनियां अखां नू मारना पएगा तां ओ सूरमा है। अखी बाजों वेखना विण कन्ना सुनना, महाराज जी कहिंदे ने आ अवस्था जिहड़ी जदों तेरी होएगी, पैरां बाजों चलना विण हत्थां करना, जीभे बाजों बोलना इउं जीवत मरना। आ है मन दा सूरमा, जीभे बाजों बोलना इउं जीवत मरना, क्योंकि ये वो सूरमा है ना जिहड़ा उस मालक दे दर ते परवान होना है। और ये शरीर दे चलदियां, शरीर दे जीवत रहिंदियां असी अपने मन दे तल ते सूरमा बन के अपने आपे नूं अंदरों मिटाउणा है, ताई ते उहदे दर ते परवान होवांगे। महाराज जी कहिंदे ने जीभे बाजों बोलना इउं जीवत मरना, तैनूं जिउंदियां जी सूरमा बन के अपने आपे नूं मारना पएगा, भैड़ी मत नूं मारना पएगा, तैनूं उह रस्ते छड्डणे पैणगे जिहड़े माड़े ने, भैड़े ने तेरे वास्ते। काम क्रोध लोभ मोह हंकार नूं त्यागना पएगा, इउं जीवत मरना। और इत्थे मुर्दा होके ही मुरीद होया जा सकदा, ते मुर्दा होण लई सूरमा बनना पएगा। मुर्दा होए मुरीद ना गल्ली होवना, गल्लां नाल नहीं। कई बहादरी दे गुण गाउंदे आ अपने गल्लां गल्लां दे विच ही गाउंदे आ, मैं इन्ना सूरमा हाँ, मैं इन्ना योद्धा हाँ, मैं इन्ना बहादुर हाँ, वो केवल गल्लां विच ही गुण गाउंदे आ। पर जिन्हां ने मर्दां वाली घाल घाली है उन्हां ने अपना आपा मिटा के भाव सूरमे बन के उन्होंने उस मालक दे दर ते परवान होना कीता है।
गुरु अंगद देव महाराज पातशाह दे ही बचन तुहाडे नाल सांझे कीते ने, अखी बाजों वेखण बिन कन्ना सुनना। ते महाराज जी कहिंदे ने, जिस प्यारे से नेह तिस आगे मर चलीए, त्रिग जीवन संसार तांके पाछे जीवना। इन्हां सारियां विचारां नूं सानूं समझना पएगा, और मन दे तल ते भी ते तन दे तल ते भी। ये दो गुण महाराज ने इसे लई दित्ते ने, तू पीरी दा गुण भी लै ते मीरी दा भी। पीरी दा गुण लएंगा ते मन दा सूरमा है, जे मीरी दा गुण लएंगा तो तन दा सूरमा है। ओ बहादुर योद्धा है जिहड़ा मैदान छड़ के भजदा नहीं, घबराउंदा नहीं, डरदा नहीं। भावें सिर दे उत्ते आरा चलदा होवे, भावें चरखी दे उत्ते चाढ़िया जा रहा होवे, ते भावें बंद बंद कटिया जा रहा होवे, और भावें खोपर लै रहा होवे, ते उबलदे पानी विच बिठाया जा रहा होवे, अग दे विच जिहड़ा ओ साड़िया जा रहा होवे, पर उन्हां दे अंदर ए अवस्था है कि मरण मुनसा सूरिया हक है। असी साहबजादियां दी शहादत नूं याद करदे हां, सूबा सरहंद वल्लों साहबजादियां नूं निक्कियां जिंदा ने साके किन्ने वड्डे वरतारे ने, ओ सानू प्रेरणा दे रहे ने। छोटियां उमरां दे विच बाबे बन के सानू प्रेरणा दे रहे ने। किन्ने तरह दे उन्हां नूं लालच दिते गए, कोई लालच छड़िया जिहड़ा ना दिता होवे उन्हां साहबजादियां नूं। हर प्रकार दा उन्हां नूं लालच दिता गया, सोने दियां मोहरां दी चमक भी दिखाई, जमीना जगीरां भी उन्हां दे नाम ते लवाउण लई आखिया, अपने धीआं दे निकाह भी करन वास्ते गल आखी गई। पर उन्होंने आख्या, नहीं, असी जिस घर दे विचो आए हाँ, मरण मुनसा सूरिया हक है। ये साढ़े सूरमियां दा एक हक, एक सच्चाई है कि मरना कबूल है, क्योंकि पहला मरण कबूल, मरना कबूल है, पर लोभ लालच दे विच आके कोई माड़ा कर्म नहीं करना, अपनी जमीर नहीं मारनी। मन दे तल ते असी सूरमे बन के अपने आपे नूं ते मारना है, अपने होमे नूं ते मारना है, अपने अहंकार नूं ते मारना है, पर ये नहीं कि असी ओ सूरमे जिहड़े अपनी जमीरां ही मार देन। जिहदी जमीर मर गई ओ सूरमा नहीं हो सकदा, जिहदी अंदरों इनसानियत ही मर गई, असी इनसानियत नहीं मरन देनी। अपने अंदर दी जमीर नूं असी मरण नहीं देना, इनू असी जिउंदा ही रखना है। मन दे तल उते असी अपने होमे नूं मारना है, ते जे जमीर ही साड़ी मर गई ते फिर असी कादे सूरमे आ, जे इंसानियत ही मर गई। तां जिन्हां दियां जमीरां नहीं सी मरियां, वो बाहरों भी जूझदे हुए शहीद हुए ने, और वो मन दे तल ते भी ये प्रण कीता होया उन्होंने कि मरण मुनसा सूरिया हक है। जो मरण हो, जिहड़ा मरना है उस वाहिगुरु दे दर ते परवान हो जाए, और जिहड़ा मन करके सूरमा बनिया हरि दे नाम रंग विच रंग के, वह भी परवान हो गया, और जिहड़ा तन दा सूरमा सी वह भी परवान हो गया। जिन्हें शहीद आपां याद करते हैं वो सब परवान हो गए वाहिगुरु दे घर। भाई साहब भाई मनी सिंह जी का ही आपां परिवार देख लीए, तो 90 तो उपर गिणती चली जाती है, 90 तो उपर की गिणती। इन्ना वड्डा परिवार केवल भाई मनी सिंह जी का शहीद होया है, उन्हां दे दादा जी तो लैके भाई मनी सिंह जी दे, गुरु हरगोबिंद साहब तो लैके गुरु गोबिंद सिंह महाराज तक,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਜੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ 90 ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਿਣਤੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਉਹ ਸਭ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਔਰ ਹੱਕ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਬਲਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਸਿਰ 'ਤੇ ਆਰਾ ਚਲਵਾ ਅਤੇ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸੂਰਮੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਬਲਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਆਰਾ ਕਿਉਂ ਚਲਵਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਬਲਦੀਆਂ, ਇਹ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਰਨ ਮਨੁਸਾ ਸੂਰਿਆ ਹੱਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਰ ਜੋਰੂ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੱਛੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਜਰ ਜੋਰੂ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੱਛੇ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਸ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ? ਉਹ ਸੱਚ ਅਤੇ ਹੱਕ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਨ ਮਨੁਸਾਂ ਸੂਰਿਆਂ ਹੱਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਰਦ ਅਗੰਬੜੇ ਬਣ ਕੇ, ਸੂਰਮੇ ਬਣ ਕੇ, ਬਹਾਦਰ ਯੋਧੇ ਬਣ ਕੇ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਆ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੈ, ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਿੰਨ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਰਨ ਮਨੁਸਾਂ ਸੂਰਿਆਂ ਹੱਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਸੂਰਮੇ ਤਾਂ ਦੋ ਪਾਸੇ, ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੂਰਮੇ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਵੈਰੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੂਰਮੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝਦੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਉਮੈ ਅਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਹਉਮੈ ਅਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹੇ ਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਉਮੈ ਅਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਚਾਰ ਜੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਰੇ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸੂਰਮੇ ਲੜਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨੇ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਉਮੈ ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਮਿਟਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਸੂਰਮੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਦਾ ਹੋਏ, ਮੁਰੀਦ ਨਾ ਗੱਲੀ ਹੋਵਣਾ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਮਿਟਾਇਆ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਸੂਰਮੇ ਆ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ। ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਵੀ ਸੂਰਮਾ ਅਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਯੋਧਾ ਹਾਂ, ਦੇਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਨਾ ਵੀ ਹਾਥੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹਾਥੀ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਦੇਹ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਦੇਹ ਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਸੂਰਮਾ ਹਾਥੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ,
लत भी तड़वा बैठा, दुनी चंद वह परवान नहीं होया। जिनी बार भी आप इतिहास सुनांगे, प्रसंग सुनांगे, परवान कौन होया? भाई साहब भाई बचित्र सिंह परवान होए। क्यों होए? क्योंकि उन्होंने वाहिगुरु के दर से आके अपना आपा मिटा दिता, उन्होंने आप मैं खत्म कर दिता, उन्होंने मैं मेरी नू खत्म होमे नाल लड़ना बहुत वड्डी एक जंग है साडे मन दी, क्योंकि होमे नाल लड़ना इन्ना सौखा नहीं है। अहंकार नाल जां इदां कह लवां कि पंज कमांडर ने जिन्हां दी कमांड दे हेठ पता नहीं किन्नी तगड़ी फौज है अगे, वो पंज कमांडर किहड़े ने? काम क्रोध लोह मोह अहंकार। ते एक कमांडर ही इन्ने मजबूत ने, ताकतवर ने, इन्हां दी अगों फौज किन्नी है? ते लड़ना किन्ने है? मन ने। मन नू पावर कित्थों मिलनी है? गुरबाणी विच्चों, गुरु दे शब्द चों। इस वास्ते जिन्हें मन जिस दे मन ने इन्हां पंजां नू मार गिराया है वह असल दे विच सूरमा है, जिन्हें अपने अंदरों होमे नू मार गिराया, काम क्रोध लोभ नू मिटा दिता, जिन्हों गुरु महाराज की थापड़ी मिल गई ना, गुरु महाराज का थापड़ा मिल गया, वह है असल दे विच वह सूरमा जिहड़ा ये समझदा है कि मर मिटना मेरा हक है, सच और धर्म मान मर्यादा की खातर। किन्ने ऐसे सूरमे ने जिन्होंने अपनी परवाह ना करदियां होया सच और हक की खातर जूझदियां शहीद होए ने। पिछले दिन ही आप किन्ना याद किया सरदार जसवंत सिंह खालड़ा जी ने, वो कादे लई जूझ रहे ने, कादे वास्ते वो शहादत का जाम पी रहे हैं, हालांकि उन्होंने मौका भी दिता गया, उन्होंने आख्या भी ये सब कुछ छड़ के एक पासे हो जाओ, बहुत कुछ तुहानू मिलेगा, पर उन्होंने आख्या भी नहीं, मैं अपने लिए थोड़ी जूझ रहा, मैं तो उन्होंने वास्ते जूझ रहा जिन्होंने तुसी लवारस आखते हो, भी इन्हों दे वारस ही कोई नहीं है, मैं तो उस सच की खातर जूझ रहा। और फिर किन्ना कुछ उन्होंने सहना पिया, अखीर फिर सहिंदिया शहादत का जाम पीदिया, पर किदी खातर? वो इस दुनिया के अंदर एक सच नू सामने लियाना चाहते सी। बहुत ने ऐसिया विचारां जड़ियां इस पंक्ति के आधार ते आपां करके समझ सकते हैं भी असल विच अर्थ की समझाउंदे आ। मन दे तल ते भी और तन दे तल ते मीरी का गुण भी इहदे च प्रगट हुंदा है, ते पीरी का गुण भी इहदे च प्रगट हुंदा है। दोवें तलवारां ने ना, दो तलवारां बद्धियां, एक मीरी दी एक पीरी दी। पीरी भी तलवार है अंदरों वैरियां नू मारन वास्ते, मीरी भी तलवार है बाहर दे वैरियां दे नाल जूझण वास्ते। इसलिए महाराज सतगुरु पातशाह जी, हुण देखो तुसी भाई लक्ष्मण दास, भाई माधव दास बैरागी जिहड़ा किसी वेले शिकार करदा है पर हथ कंबन लग जांदे आ, शिकार छड के बैरागी बन जांदा है। हुण तां करद भी पकड़नी होवे तां भी हथ कंबदे आ, बैरागी बन गया माधव दास। पर महाराज ने वह सूरमा बना दिता, वो ऐसा बहादुर सूरमा बनाता बंदा सिंह बहादुर दे रूप विच। हुण वो जदों नंदेड़ तो पंजाब वल आउंदा है ते फिर किन्ना बहादुरी नाल जूझदा है, ते जूझदियां जूझदियां अपना आपा भी किन्ना बहादुरी नाल कुरबान करदा है, इहदे अखां भी कढ दित्तियां, जमूरां दे नाल मास भी इहदा खिच लिया, इहदे बच्चे दा कलेजा कढ के सीना चीर के इहदे मुख विच भी पाया, पर फिर भी वह नहीं घबराउंदा क्योंकि उहनू पता है कि मरन मुनसा सूरियां हक है। असी अपने लोभ लालच की खातर नहीं जूझ रहे हैं, असी हैं ये
दुनिया दे विच सच और हक दी खातर गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी वड्डियां ते छोटियां जंगा मिलाइए ते तकरीबन 18 दे करीब बन जांदियां ने। जे वड्डियां छोटियां जंगा देखिए गुरु महाराज दे जीवन च, वो कादे वास्ते है? सच और हक दी खातर। सूरा सो पहचानिए जो लड़ै दीन के हेत, धर्म दी खातर, मान मर्यादा दी खातर। इसलिए महाराज कहिंदे आ तू पहला मन दा सूरमा बन, हरी दे नाम परमेश्वर दे नाम रंग दे विच रंग जा। जदों अंदर नाम रंग चढ़ेगा फिर तू ओ बहादुर योद्धा बन जाएगा। जो इंसानियत दी खातर, मनुखता दी खातर, उस मालक दे दर ते परवान होण दी खातर तू इन्हां दे नाल जूझ लेंगा। काम क्रोध लो मोहंकार जिहड़े एक बहुत मजबूत तकड़े बल वाले कमांडर ने, इन्हां नाल तेरी फाइट है, इन्हां नाल तेरी जंग है। सतगुरु महाराज जी समझाउंदे ने, क्योंकि देखो जे मरण दी गल आपां करिए तां

सतगुरु जी सानू होर समझाओ ताकि समझ चंगी तरह आ जाए। तो महाराज कहिंदे कर एक त्यावें, वो एक नूं ते आउंदे आ, वो ये नहीं कि अज होर कल होर, वो सिर्फ ते सिर्फ एक अकाल पुरख परमेश्वर नूं ही ते आउंदे ने। एक ओंकार दे नाल ही वो सदा वास्ते जुड़ जांदे ने। कर एक त्यावें तां फल पावें, तां उस दर ते परवान होण वाला वो फल पाउंदे ने। आगे दुख ना लागे ये फल वो तां पाउंदे ने क्योंकि उन्होंने हर वेले एक नूं ही ते आया है, परमेश्वर नूं, अकाल पुरख वाहिगुरु जी नूं। रोज असी पढ़ते हाँ पर मनदा कोई कोई है। मानुख की टेक बिरथी सब जान, देवन कौ एक है भगवान। जमण भी ओदे हाथ है ते मरना भी ओदे हाथ है। मारे रख है एको आप मानुख कह किछ नहीं आत। इसलिए महाराज कहिंदे ओ एक नूं ते आउंदे हन ते फिर आ फल उन्हां नूं मिलदा है। जित सेवे है जिदा सिमरन कीतियां भाओ भाग है, हर प्रकार का डर उन्हां दे मन विचों दूर हो।

साहब कहिंदे उह आप ही देख रहा है, आप ही बुझ रहा है और आप ही अपने हुक्म नूं पछाणन वाला। उहदे हुक्म नूं कोई नहीं पछाण सकदा, ना उहदा हुक्म दसिया जा सकदा। हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहिया जाई। ये सारा आकार सृष्टि कुदरत ये उहदे हुक्म दे विच है, उहदा हुक्म रोज वरतदा है, पर हुक्म न कहिया जाई, दसिया नहीं जा सकदा। इस वास्ते वो अपने हुक्म नू भी आप जानदा है, सबना नू आप ही वेख रहा है, आप ही सबना नू बुझे समझ रहा है कि कौन किदां दा है, कौन किस अवस्था दा है। सानू नहीं पता लगेगा क्योंकि असी अंदरों हो रहा ते बाहरों हो रहा, बाहरों साडा जीवन हो रहा अंदरों हो रहा, नहीं पता लगेगा। पर वो जानदा है अंदरों ये किवें दा है ते बाहरों किवें दा है। सतगुरु महाराज गुरु नानक साहब जी समझा।

विक है। अमृत वेल दिवान सजाई गई सजे हुए देवानंदर श्रिया सदिवार दे शब्द कीर्तन गुरबाणी लड़ीवार कथा विचार से पौड़िया आनंद साहब जी के पाठ की अरदास है जी। अखरवादा घाटा भूल चुक माफ करने आप जिया दे दर ते समूह साध संगत दी हाजरी दर प्रवान करने तिल फुल पेटा बंद।

मस्तक लिखत लिखे गुण गाए, मिल संगत पार परो रहाओ। काया नगर में राम रस उत्तम, क्यों पाइए उपदेश जन करो। सात गुर सेव सफल हर दर्शन,

चार पदार्थ चारे पाए गुरमत नानक हर भजो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैवं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैवं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैवं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैवं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैवं गुर प्रसाद।

0: अनक बने चरण करतनी तरे हर को नाम कोट पापर हरे
1: नाम जपो मन मेरे नानक पाऊ सुख घनेरे
0: सिष्ट को राजा दुखिया हर का नाम जपत हो सुखिया
1: करोरी बंद न पर हर का नाम जपत निस्तर
0: अनक माया रंग तिख न बजावे हर का नाम जपत आगावे
1: मारग ही जात अकेला ते हर नाम संग होत सुमेला
0: ऐसा न मन साथ ये नानक गुरमुख प्रम गत पाइये
1: नहीं कोट लक बाही नाम जपत ते पार पर
0: अनक बिगन जे आए संगारे हर का नाम तद काल उदारे
1: जोन जन में मर जाम नाम जपत पावे विश्राम
0: ओम मैला मल कबू न तो वे हर का नाम कोट पाव खोवे
1: नाम जपू मन रंग नानक पाई

0: आसन जन मार संजम साधना
1: शरीर कटावे तो भी हूँ मैं न जाए
0: हर के नाम संसर कठिनाए नान गुरमुख नाम जबद गत पाए
1: मन कामना तीर देह छुटे गर्भ माना मनते हूँ
0: सोच करे दिन

0: सर्व सुख ताहू मन मुठा
1: जन अपना हुकम मनाया सर्व थोक नानक ति
0: अगण सापनी दे राज खात पीत बरते नंदो ला
1: मान कज बहुर साले अज्ञानी मन रोस करे
0: अपनी प्रतितापी खोवे बुरस का विश्वास न होवे उससे चौगुण करे निहाल नानक साहिब सदा दयाल
1: भात माया के हेत सर पर होवत जान
0: बिरकी छाया से रंग लावे ओ बिन से ओ मन पछतावे बटाओ सो जो लावे नहीं ताको हाथ न आवे कहे मिथ्या तन धन कुटुम सुबाया मिथ्या हूँ मैं ममता माया
1: धन माल मिथ्या काम क्रोध बिकरा
0: मिथ्या रथ हसी मस्त्रा मिथ्या रंग संग माया पे खस्ता
1: द्रोमो अभिमान मिथ्या आपस ऊपर करत
0: गुमा अस्त्र पग साध की शरण नान जब जब जीवे हर के चरण
1: सर्वन पर निंदा सुन है मिथ्या हस्त पर दरब को हिरे
0: मिथ्या नेत्र पे कत पात्र रूपाद मिथ्या रसना भोज रन स्वा
1: चरण पर विकार को दाम है मिथ्या मन पर लोग लुभा
0: मिथ्या तन्नी पर पकारा मिथ्या बास लेत बेकारा
1: मिथ्या सब सफल दे नानक हर हर नाम
0: बेति साक्त किया जा सत बिना कहो सुचा
1: नाम बिना तन अंध मुकावता कह दुर्गा
0: बिन सिमरन दिन रैन बिरथा ब्याए मेघ बिना जो खेती जा
1: भजन बिन बिरथे सब काम जो कृपन के निरार
0: तन तन ते जन जय कटवस्यो हर नाम नानक ताके बलबल जा
1: अवर कच अवर कमावत मन नहीं प्रीत
0: जानन हर प्रभु प्रवीण बार देख न काहू पीना
1: आप न करे आवत जावत जन्म
0: जिसके अंतर बसे निरंकार तिसकी सीख तरे संसार
1: प्रभ जाता नानक हुन जन चरण पर
0: प्रवेंती पारन सब जन ने अपना किया आपे मने
1: आप करत निबेरा किसे दूर जनावत किसे बुझावत
0: उपाव से अन सकल तेरा है सब की जाने आत्म की राय
1: मैं तिस लय लड़ लाए तान तन अंतर रहया
0: सो सेवक जिस कृपा करी निमक निमक जप नानक हरि सलो काम क्रोध अर लोभ मोह बिन सजाए आमे नानक प्रभु शरणागति कर

0: लावेत इसको स्मृत परम गत पावे
1: प्रसाद बसे सुख मंदर तिसे ध्याय सदा मन
0: जे प्रसाद गए संसुख बसना आठ पैर स्मरो तिस रसना
1: प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा ध्याय ध्यान
0: जे प्रसाद पाठ परम ब्रह्मावे तिसे त्यागत अमर लुभावे
1: प्रसाद सुख से सोई जय मन आठ पैर ताका जस गावे
0: जे प्रसाद सबको मन ने मुक्ता को जस रसन मखाने प्रभु जी जब दुर्गा मन पावे नान पासे ती कर जावे
1: प्रसाद आरोप कंचन देही निवलावो तिस राम सुने
0: हे प्रसाद रौला रत मन सुख पावे हर हर जस कहत प्रसाद को न पहुँचे मनसा सा स्मरो प्रभुचे जे प्रसाद अपुखण पैरी जे मन तिस स्मृत क्यों हाल सकी जय
1: प्रसाद
0: बाग बिलकत ना राख प्रोए प्रो अपने मना जो एक लखिया नान तेरी रखे जी प्रसाद उचार बिहारी तिस पर को सासा चितारी
1: सुंदर रूप सो प्रभु सिमरो सदा अनुरे
0: जी प्रसाद तेरी निकी जा सो प्रभु सिमरो सदा दिन रात
1: जी प्रसाद तेरी पत्र है गुर प्रसाद नानक जस
0: जी प्रसाद सुने कन्ना जी प्रसाद पेखे बिस्मा
1: जी प्रसाद बोले अमृत रसना जी प्रसाद सुख सहजे
0: जी प्रसाद हस्त कर चले जे प्रसाद संपूर्ण फल
1: प्रसाद परम गत पावे जे प्रसाद सुख सह समाए
0: ऐसा प्रत्याग अवर कत लागो।

0: जे प्रसाद तू पावे साच रे मन मेरे तू ता सुरा
1: प्रसाद सबकी गत होए नानक जाप जपे जप सो
0: आव जपाए जपे सो नाव आव गवाए सो हर गुण गाओ
1: प्रभु दया ते कमल
0: बिगा प्रभु सो प्रसन्न बसे मन सोए प्रभु दया ते मत उत्तम होए
1: रम

अथ अष्टवदी सक संकूजल हो सत्संग मल सकली घो साध के संग बुझ पौ नेरा सत्संग सब होत न बेरा साध की मैं माँ बने कौन प्राणी नान साध की शोभा ब्रह्मा समानी साध के संगावे बस पंचा सा संग मृत रस पंचा।

सा संग धर्म राय करे सेवा सा कृष्ण शोभा सुरदेवा साध के संग सर्वथान गम नान साध के संग सफल जन्म साध के संग लोकत हरे साध के संग नरक पर हरे जो इच्छे सोई फल पावे साध के संग न वृथा जावे साध के संग सुनो हर नाउ सा संग हर के गुण गाओ साध के संग लगे ब्रह्म मीठा साधु के संग कड़कड़ डीठा साध के संग मटे सब

0: अष्टपदी
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में है कमल अलेप
0: ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे सु सर्व को सो
1: ज्ञानी के दृष्टि समान जैसे राज रंग को लगे तुल पवन
0: ब्रह्म ज्ञानी के तीर जे किंजो बसदा को खोदे को चंदन ले
1: ब्रह्म ज्ञानी का ए गुनाओ नानक जो पाव का सहज
0: ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल न लागे जला
1: मन होए पर गात जैसे धरु पर आकाश
0: ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सर समान ब्रह्म ज्ञानी के नाई अभमान
1: ज्ञानी ऊंच ते ऊंचा मन अपना है सब ते नीचा
0: ब्रह्म ज्ञानी से जन भाई नान जन प्रव्याप करे
1: ब्रह्म ज्ञानी सगल कीरी ना आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना
0: ब्रह्म ज्ञानी की सब परम है ब्रह्म ज्ञानी ते कज बुरा ना भया
1: समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि अमृत बरसी
0: ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता
1: ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान
0: ब्रह्म ज्ञानी एक प्रयास ब्रह्म ज्ञानी का नहीं बिना
1: ज्ञानी के गरीबी समाहा ब्रह्म ज्ञानी पर कारू महा
0: ब्रह्म ज्ञानी के नाही तंदा ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा
1: ज्ञानी के होए सुभला ब्रह्म ज्ञानी सुफल
0: ब्रह्म ज्ञानी संसल उदार नानक ब्रह्म ज्ञानी जपे सकल संसार।

0: निवास नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं
1: ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का वित्ता ब्रह्म ज्ञानी एक संहिता
0: ज्ञानी क्या होए अचिंत ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मन
1: ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रवेहा ब्रह्म ज्ञानी का बड़ परता
0: ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई है ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाए
1: ब्रह्म ज्ञानी को खोज मह सरनाण ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर
0: ब्रह्म ज्ञानी
1: का कौन जाने वेद ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश
0: ब्रह्म ज्ञानी का कथया न जाए अदा कर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का
1: ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने
0: अंत न पार नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा

0: संगत पावे।
1: भगवान भगत कारण सगल त्यागे दुष्ट का संग
0: मंत्र बिनसे सगला धर्म कर पूजे सगल पार ब्रह्म
1: सा संग पापा मन खोवे तिस भगवती कीमत उत्तम होवे।

0: जिसके मन पार ब्रह्म का निवास, तिसका नाम सत राम दास। सदा नक नकट हर जान सो दादर प्रवान।
1: दास को आप कृपा करे, तिस दास को सब सोझी पर।

0: बहुविधि अनक प्रकार अष्टपदी कई कोट होए पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी
1: कई कोट तीर्थवासी कई कोट मन भ्रम उदासी
0: कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तपिसर होते
1: कई कोट आत्म ज्ञानदार है कई कोट कब काल विचार है
0: कई कोट नाम ते आवे नानक करते कांत न पावे
1: कई कोट बे अभिमानी कई कोट अंध ज्ञानी
0: कई कोट कृपण कठोर कई कोट अभिज्ञ आत्म ने को
1: कई कोट पर दुख ना करे
0: कई कोट माया श्रम माए कई कोट प्रदेश

0: सगल समग्री अपने सो तारे नाना जिज पावे तिस तिस निस्तारे
1: कई कोट राज सम सत कई कोट वेद पुराण सिमरत शास्त्र
0: कई कोट कीर्तन समुद्र कई कोट नाना प्रकार जन
1: कई कोट किए चिर जीवे कई कोट गिरी मेर सुरन थीवे
0: कई कोट जक नर पिसाच कई कोट भूत प्रेत

0: सलोक कर्ण कारण प्रभ एक है दूसर नाही कोय नानक तिस बलहारण जल थल मैयल सोय अष्टपदी
1: करण करावन करण जोग ज्योतिष भावे सोई होगी
0: में थप थपन हारा अंत नहीं किच पारा बारा
1: में धार अधर रहावे हुक्मे उपजय हुक्म समावे
0: हुक्मे उच नीच व्यवहार हुक्मे अनक रंग प्रकार
1: कर देखे अपनी वडियाई नानक सब मह रहया समाई
0: प्रपावे मानव गत पावे प्रपाविता पात्र त्रावे
1: प्रभावे ता
0: हर गुण भाखे आप करे अपन बिचारे
1: सिरिया का आप स्वामी खेले भिक्षे अंतर जामी
0: जो पावे सो कार करावे नानक दृष्टि अवर न आवे
1: मानुते क्या हो आवे ज्योतिष भावे सोई करावे
0: इसके हाथ हुई तां सब कुछ ले जो पावे सोई करे
1: जानत बिखिया मेहर चै जे जानत अपन आप बचे
0: घर में पुला दें स्तावे निमक माए चार कुंड फिरे आवे
1: कृपा जिस अपनी भगत दे नानक ते जन्नाम मिले
0: फिर में नीच कीट को राज पार ब्रह्म गरीब नवा
1: जाका दृश कछू ने आवे तिस तत्काल दे दिस प्रगटावे
0: जाको अपनी करे बख्शी ताका लेखा ना गने जगदीश
1: सब तिस की राज घट घट पूरन ब्रह्म पर गा
0: अपनी बन आप बनाई नानक जीवे देख बढ़ाई
1: इसका बल नाही इस हाथ करन करावन सर्व को
0: आप जा करी बपराजी जो सबावे सोई भन थी
1: बसे कभू सोग हरक रंग
0: कौन निंद चिंद व्यवहार कबू

0: क्रोध विकराल कदूं सर्प की हो तरह
1: कबू होए बहे बटराजा कहूं बेखारी नीच का साजा
0: कीरत में आवे कबू बला भला कहा
1: जो परवरा खेत भी ही रहे गुर प्रसानान सच कहे
0: पंडित करे बखियान कबू मोन धारी लावे
1: कबू तड़ते स्नान कबू से साधक मुज्ञान
0: पतंग होए जिया अनक जोन भर में भर
1: नाना रुज स्वांगी दिखावे जो प्रपावे तवे नचावे
0: भावे सोई होए नानक दूजा अवर न कोई
1: कमू सा संग ते पावे सस्थान ते बोर न आवे
0: तर होए ज्ञान

0: ते कुछ होए तब से को सुख नाही कोए।
1: जाने मैं किच करता तब लग गर्भ जोन में फिरता।
0: जब तारे को बैरी में तब लगने चल नाई चीता।
1: मोह मगन संग माए तब लग धर्म राय देश जाए।
0: प्रभु के बाते बंधन टूटे गुर प्रसाद नानक हां छूटे।
1: खटे लग को उठ धावे त्रिवत नावे माया पाछे
0: पावे। अनक पौग बिखिया के करे नत बतावे खब खब मरे।
1: संतोख नहीं को राजे सुपन मनोरथ बिरते सब का।
0: नाम रंग सर्व सुख होए बड़ पा

0: कर अष्टपदी संत के दुखन आर्जा कटे संत के दुखन जमते नी छुटे
1: संत
0: के दुखन मत होए मलीन संत के दुखन शोभाते ही
1: संत के हते को रखे न कोए संत के दुखन थान ब्रश होए
0: संत कृपाल के

0: संतन के दुखन सर्प जोन पाए, संत के दुखन तग जोन के रमाए।
1: संतन के दुखन कृष्णा में चले, संत के दुखन सबको चले।
0: संत के दुखन ते सब जाए।

संत के दुखी को डान लागे, संत के दुखी को सब ते आगे, संत का दुखी जन्मे मरे, संत की दुख ना सुखते टरे, संत का दुखी यद

0: आए
1: रख एको आप मानु कह किच नाही
0: हिसका कम्बू सुखोए तिसका नाम रख कंट परोए
1: सिमर सिमर प्रभु सोए नानक बिघन न लागे कोई
0: उस मन में कंकार कर्पण मेरे सत व्यवहार
1: निर्मल रसना अमृत पियो सदा सुहेला कर ले जियो
0: ननो एक ठाकुर कारंग सा संग बिनसे सब संग
1: चलो मार्ग गोविंद मिट है पाप जपिए हर बिन
0: कर हर कर्म श्रवण हर कथा दुर्गे नानक उज्जल मथा
1: गीते जन जग माहे सदा सदा हर के गुण गाए
0: राम नाम जो करे विचार से तनमंत गणी संसार
1: कन मुख बोले हर मुखी सदा सदा जानू ते सुखी
0: एको एक एक पछाने तुझ की ओ सो जी जाने
1: नाम संग जिसका मन माने नानक तिन है निरंजन जाने
0: गुर प्रसाद अपने आप सुजे तिसकी जानो तिस ना बुझे
1: साध संग हर हर जस कहत सर्व रोग ते ओ हर जन रहे
0: अंधन कीर्तन केवल बखियान ग्रस्त मैं सोई निर्वाण
1: ऊपर जी जन की आशा तिसकी कटिया जम की फासा
0: और ब्रह्म की जिस मन भूख नान तिसे न लागे दुख
1: ब्रह्मन चित आवे सो सन सुहेला नहीं डुला
0: जिस प्रभु अपना कृपा करे सो सेवक को किसते डरे
1: सा दृष्टा अपने कारज में आप समाया
0: सोदो सोदो सोदो सीजया गुरु प्रसाद तस सब बुझया
1: तब सब किस मूल नानक सो सुखम सोई अस्त
0: न कि जन में न किस मरे अपन चल तापी करे
1: जामन दृष्ट अंदृष्ट आज्ञाकारी धारी सब श्री
0: अपे आप सगल में आप अनक जुगे राज था पोथा
1: किच खंड धारण धार रहे ब्रह्मांड
0: लख पे प्रुख प्रताप आवज पाए ता नानक जा
1: जाता सुशोभावंत सगल संसार उदरे तीन मन
0: प्रभु के सेवक सर्व उदारण प्रभु के सेवक दुख विसारण
1: आपे मेल लये कृपाल गुरु का शब्द जब भये निहाल
0: उनकी सेवा सोई लग गे जिसनो कृपा करे वट भागे
1: जपत पावे विश्राम नानक तीन पुरख को उत्तम कर्म
0: जो कुछ करे सो प्रभु के रंग सदा सदा बसे हर संग
1: सुभाए
0: हो वै सो हो करने हार लगाना जैसा सता सा दिष्टाना
1: किस माए समाए होए सुख निधान उनु बन
0: आपस को आप दिनो मान नान प्रभजन एको जान श्लोक सर्व कला परपूर प्रभ बिरथा जन नहार जाक

0: सत सेवदार
1: दर्शन सत सद पिकनहार नाम सत सत्यावनहार
0: आप सत सत सबधारी आपे गुण आपे गुणकार
1: शब्द सत सत प्रवक्ता सुर सत सज संता
0: जनहार कौ सत सब होए नानक सत सत प्रभु सोए
1: सत स्वरूप दे जन मान्या करण करावंत न मूल पछान्या
0: विश्वास प्रभ आया तत ज्ञान किस मन प्रगटाया
1: तीन पोहे बसन्ना जिससे उपजा समय समाना
0: मायने बस्त गडाई ताको
1: बुझे बुझन हार विवेक नारायण मेरे नानके
0: ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी ठाकुर का सेवक सदा पूजा
1: ठाकुर के सेवक के मन प्रति ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत
0: सेवक जान संग प्रभ का सेवक नाम कह
1: सेवक को पालन हारा सेवक की राखण ट्रंकारा
0: सेवक जिस दया प्रभ धारा नानक सो सेवक साथ साथ
1: अपने जन का प्रदाता के अपने सेवक की सर पर रखे
0: को दे वडाई अपने सेवक को नाम जपा
1: अपने सेवक की आपद रखे ताकि गत में कोई न लखे
0: सेवकों को ना पहुँचे प्रभ के सेवक पूछते
1: जो प्रभ अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दया दिस प्रगटाया
0: बसम करे लस्कर कोटला
1: जिसका शासन काटे आप ताको रख देख रहा
0: जतन करत बो भात जिसके कर्तव्य थे जा
1: मारे न रखे वरन कोय सर्वजिया का रख सो
0: रे प्राणी जप नानक प्रभ अलख विदान
1: बारंबार बार प्रभ जपिए पी अमृत मन तंत्र पिए
0: गुरु मुख पाया तिस किछ अवर नहीं।

0: आसरो सतपुरख जिन जानिया सतगुर तिसका नाम तिसके संग सुख उदरे नान हर गुण गाओ अष्टपदी सिखी गुर दुर्मत मिलरे गुर वचनी हर नाम उतरे
1: के बंधन काटे गुर का सिख विकार दे।

0: से
1: आपस को कर कछ ना जनावे हाय हर नाम हृदय सदा
0: मन बेच सतगुरु के पास सेवक कार्य रास
1: कामी तिस को होत पर आपस
0: अपनी कृपा सिया करे नान सो सेवक गुरु की मत ले
1: का मन माने सो सेवक परमेश्वर की गति
0: सो सतगुरु जिसे हर नाव अनक बार गुरु को बल जाओ ब्रह्म जन जन में पार ब्रह्म एक आप नहीं कछ परम
1: जाये नानक ऐसा गुरु बड़ भागी
0: सब दर्शन पेख पुनीत असा चन गद निर्मल रीत
1: संग राम गुण रवे पार ब्रह्म की दर्शन
0: सुन कर बचने करने गाने मन संतो आत्म पतिया ने
1: मंत्र अमृत दृष्टि
0: गुण बयान कीमत नहीं पाए नान जिस पावे तिस ले मिला
1: हे बाए

0: बंधन नित करे चरण कमल हृदय सिमरे
1: हरि सतगुरु अपने नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभु
0: रस पावे जन कोय अमृत पीवे अमृत होए
1: का नहीं कदे विनाश जाके मन प्रगटे गुणता
0: आठ पैर हर का नाम ले सच बदे सेवक को दे
1: माया के संग न ले मन में रखे हर हर
0: अंधकार दीप

हर हर नाम कमावना नानक तनसार अष्टपदी संत जना मिल करो विचार एक सिमरन नाम करण कान सो प्रभु सम्राट दर कर गौ नाम रवत एक आस राखो मन माई सरवरो नानक मिट जाहे।

0: राष्ट्रपति
1: जाचक जन जाच प्रवदान कर कृपा देवो हरिनाथ
0: साजन की मंगतुर पर ब्रह्म
1: सदा सदा प्रभ के गुण गाओ साथ साथ प्रभ तुम्हें ध्यान
0: कम सो लगे पीत भगवरो प्रभ की निधनी
1: एको आधार नानक मांगे नाम प्रभ सा
0: प्रभ की दृष्ट महासुख होए हर्ष पावे बिल्ला कोई
1: ऐसे जन तृप्ता ने पूरन पुरख नहीं डोला
0: सुपर परे प्रेम रस रंग उपजे चाओ साध के संग
1: शरण आन सब त्याग अंतर प्रगाश अंदिल्ली
0: बड़बागी जपया प्रसोए नानक नाम रति सुख हो
1: मनसा पूरी भई सतगुरु ते निर्मल मत
0: जन को ब्रह्म दयाल सेवक इन्नो सदा निहाल
1: मुकत जन भया जन्म

0: तारे कछ ना दिशते ता पाप पुन तब कहते होता
1: जब तारी अपन संसमात बैरो के संकमात
0: इसका बरन चिहना जापत तब हरक सो को किसे
1: जो अपने आप आप पार ब्रह्म तम्बो का

0: जगत प्रभु आपे मिले।
1: साथ संग मिल करो आनंद गुण गाव परमानंद।
0: नाम तक करो विचार दुर्लभ देखा करो उदार।
1: अमृत वचन हर के गुण गाओ प्राण तरण काय सोवा।
0: प्रभु को मेरा मिटा ज्ञान बिन से अंधेरा।
1: सुन बदे हृदय बसाव मन इच्छे नानक फल पाव। पूरे गुरु की पूरी दीखया जिस मन बसे तिस साच परिखया।

0: सुवंत्र सुवर्णन कटकट व्याप्रिय भगवन
1: माया काश पयाल सर्व लोक पूरन प्रभा
0: पंतन पर्वत है पारम जैसी अज्ञात ऐसा कर्म
1: पानी बैसंतर माहे चार कुंड दे दिसे समाए
0: तिसे भिन्न नहीं कोठाओं गुर प्रसाना

0: परम संत जना के हृदय सब धर्म
1: सुन
0: है सुप बचन सर्व राम संग सत बचन साधु सब कै अंतर बसे बार पियो नानक दर्शन देख समो
1: सत किया सब सत तिस प्रभ ते सगली उत्त

की तबै चलायो। सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो, गुरु ग्रंथ जी मान्यो, प्रगट गुरां की। जो प्रभु को मिल बोचै खो शब्द में।

रहाओ सब सुरती मिल सुरत कमाई सब कीमत मिल कीमत पाई ज्ञानी ध्यानी गुर गुर हाई कहण ना जाई तेरी तिल वड़ियाई सब सत सब तप सब चंगियाईया सिद्धा पुरखा किया वड़ियाईया तुद बिण सिद्धी किनै ना पाईया कर्म मिलै नाही ठाक रहाईया आखण वाला क्या विचारा सिफती भरे तेरे भंडारा जिस तू देहे तिसै क्या चारा नानक सच सवारण हारा आसा महला पहला आखा जीवा विसरै मर जाओ आखण औखा सचा नाओ साचे नाम की लागै भूख उत भूखै खाए चलिए दुख सो क्यों विसरै मेरी माए साचा साहिब साचे नाए रहाओ साचे नाम की तिल वड़ियाई आख थके कीमत नहीं पाई जे सब मिलकै आखण पाए वड्डा ना होवै घाट ना जाए ना ओह मरै ना होवै सोग देंदा रहे ना चुकै भोग गुण एहो होर नाही कोई ना को होआ ना को होए जे वड़े आप ते वड़ तेरी दात जिन दिन करके कीती रात खसम विसार ते कम जात नानक नावे बाज सनात राग गुजरी महला चौथा हर के जन सत गुर सत पुरखा बिनो करो गुरपास हम कीरे किरम सतगुर शरणाई कर दया नाम परगास मेरे मीत गुरुदेव मोको राम नाम परगास गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई हर कीरत हमरी रह रास रहाओ हर जन के वड भाग वडेरे जिन हर हर शरदा हर प्यास हर हर नाम मिले तृपता सह मिल संगत गुण प्रगास जिन हर हर हर रस नाम न पाया ते भाग हीन जम पास जो सत गुर शरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास तन तन सत संगत जित हर रस पाया मिल जन नानक नाम प्रगास राग गुजरी महला पंजवा काहे रे मन चित वह उद्दम जा आहर हर जीओ परया सैल पत्थर मैं जंत उपाए ता का रिजक आगे कर धरिया मेरे माधो जी सतसंगत मिले सो तरिया गुर प्रसाद परम पद पाया सूके काष्ट हरिया रुहाओ जनन पिता लोक सुत बनेता कोई ना किस की तरिया सिर सिर रिजक संभाए ठाकुर काहे मन भाव करिया ऊडे ऊड़ आवै सह कोसा तिस पाछै बचरे शरिया तिन कवन खलावै कवन चुगावै मन में सिमरन करिया सब निधान दस अष्ट सिधान ठाकुर कर तल धरिया जन नानक बल बल सद बल जाइए
तेरा अंत ना पारा वरिया। राग आसा महला चौथा, सो पुरख एक ओंकार सत गुर प्रसाद। सो पुरख निरंजन, हर पुरख निरंजन, हर अगमा अगम अपारा। सब त्याव हैं, सब त्याव हैं तुध जी, हर सच्चे सिर जनहारा। सब जीव तुम्हारे जी, तू जिया का दातारा। हर त्याव हो संतो जी, सब दुख विसारण हारा। हर आपे ठाकुर, हर आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचारा। तू काट काट अंतर सर्व निरंतर जी, हर एको पुरख समाणा।

न अवर न जाना तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख वखाणा जो सेवै तुद जी जन नानक तिन कुरबाणा हर त्यावै तुद जी से जन जुग मैं सुख वासी से मुक्त भए जिन हर त्याया जी तिन तूटी जम की फासी जिन हर निरभउ त्याया जी तिन का भउ सब गवासी जिन सेवया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से तन जिन अर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी परे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी।

ना चेत समूड मना हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहाओ ना हो जति सती नहीं पड़िया मूर्ख मुगदा जन्म पया परणवत नानक तिन की शरणा जिन तू नाई विसरिया आसा महला पंजवा ई परापत मानुख देवरिया गोबिंद मिलन की ए तेरी बरिया अवर काज तेरे कितै ना काम मिल।

हरि सर्व ठौर मोह सहाय दुष्ट दोग ते लो बचाई अड़ग केत मैं शरण तिहारी आप हाथ दे लो उबारी सर्व ठौर मोह सहाय दुष्ट दोग ते लो बचाई सोइया पाए गए जब ते तुमरे।

मान्यो सिमृत शास्त्र वेद सब बहुपेद कहे हम एक न जान्यो श्री अस पान कृपा तुम री कर मैं ना कहो सब तो ए बखान्यो दोरा सगल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार बाएं गए की लाज अस गोविंद दास तुहार सगल द्वार

हम अवगुण परे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखे बिख खाही, माया मोह परम पै भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तह मिलंत जमत्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राखो शरणाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राखो शरणाई। सुख हो टल गुर सेविए, अहनस सहज सुभाए, दर्शन

ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निरपो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरुप्रसाद तुध वागैरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा कहो नानक सब तेरी वडियाई कोई ना वो न जाने मेरा कहो नानक सब तेरी वडियाई कोई ना वो न जाने मेरा गुरु नानक

आवो संत मिलो हो मेरे पाई, मिलो हर हर कथा करो, हर हर नाम बोहित है कलयुग खेवट गुरु शब्द तरो। आवो संत मिलो मेरे भाई, मिल हर हर कथा करो, हर हर नाम बोहित है कलयुग खेवट गुरु शब्द तरो। मेरे मन हर गुण हर उच्च रहो, मस्तक लिखत लिखे गुण गाए, मिल संगत पार परो रहाओ। काया नगर में राम रस उत्तम, क्यों पाइए उपदेश जन करो। सतगुरु सेव सफल हर दर्शन, मिल अमृत हर रस पियो। हर हर नाम अमृत हर मीठा, हर संतो चाख देखो। गुरमत हर रस मीठा लागा, तिन बिसरे सब बिखरसो।

गुरमत नानक हर भजहु, राम नाम रस राम रसायण, हर सेवो संत जन हो। चार पदार्थ चारे पाए, गुरमत नानक हर भजहु। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी साहिबां गुरु प्रसाद। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

जय कर कीर्ता किय करते कावे बिचारो तित कर गावो सोहिला सवरे ओ सृजनहारो तुम गावो मेरे निरपाव का सोहिला हाऊ वारी जित सोहिले सदा सुख होय रहाओ नित नित जीड़े संभालियन देखेगा देवन हार त्रिदान कीमत ना पवै त सदा ते कमल समार संबत सा लिखिया मिल कर पावो तेल देहो सजना आशीषड़िया जो होवै साहिब सुमेल घर करो पहुंचा सदड़ नित पवन सदना रस सिमरिय नानक से देवन राग आसा महला पहला छे कर छे गुर छे उपदेश गुरु गुर एको वे सनेक बाबा जय कर करते कीर्त होए सो कर राग वडाई तोय राहो विश्व जसिया घड़िया पैरा तिथी वारी माऊ वा सूरज को रोता ने नानक करते के केते वेश राग तनासरी महला पहला गगन मैथाल रव चंददीपक बने तार कमंडल जन कमोती ऊप माल्याण लो पवन चवरो करे सकल बन राय फूल अंत ज्योति कैसी आरती होए पव खंडना तेरी आरती अनहत्ता शब्द व जंत भेरी रहाओ सहस तव नैन नन नैन है तो एक को सहस मूर्त नायक तो ही सहस पद बिमल नन एक पद गंध बिन सहस तव गांध देव चलत मोही सब मैं जोत जोत है सोए तिस दै चानन सब मैं चानन होवे गुरसाखी जोत प्रगट होए जो तिस पावै सो आरती होए हर चरण कवल मकरा द्रोवित मनो आनंदो मोए आई प्यासा कृपा जल दे नानक सारें को होए जाते त्रिनाए वासा राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर वो परिया मल साधु खंडल खंडाए पूर्व लिखते लिखे गुरु पाया मना लि मंडल मंडाए कर साधु अंजलि पनवडाए कर नंडौत पनवडाए राव साख तारा साधन जानिया तने अंतरों में कंडाए ज्यों ज्यों चले चुभे दुख पावे जमकाल सह सह डंडाए हर जन हर हर नाम समाणे दुख जन मरण पव खंडाए विनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहुत शोभ खंड बह मंडाए हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख वर वडाए जन नानक नाम दा टेक है हर नामे सुख मंडाए राख गौड़ी पूर्वी महला पंजवा परो बेनंती सुनो मेरे मीता संत टैल की बेला इहां खाट चलो अरला आग्या बसन सहेला औद घटै दिन सरै नारे मन गुरु मलका सवारे रहाओ ए संसार विकार संसे मैं तरयो ब्रह्म ज्ञानी जिसै जगाए पियावै रस आकाथ कथा तन जानी जा को आए सोई बिहाजो हर गुर ते मने बसेरा निज कर मैल पावो सुख सहजे बौड़ न होए गो फेरा

0: वाहे गुरु जी की फतेह।
1: सवैये श्री मुख वाक्य महला पंजवां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। काची देह मोह फुन बांधी, सठ कठोर कुचिल कुग्यानी। तावत ब्रह्मत रहन नहीं पावत, पार ब्रह्म की गत नहीं जानी। जोबन रूप माया मद माता, बिचरत बिकल बड़ो अभिमानी। पार धन पर अपवाद।

चित चेत अचेत जान सत्संगत परम अंधेर मोहयो कत तों मूरत करी चसा पल सिमरन राम नाम रसना संगलो होछो काज अलप सुख बंधन कोट जन्म कहा दुख पाऊं सिख्या संत नाम भज नानक राम रंग आत्म स्योरो रंचक रेत खेत तन निर्मत दुर्लभ देह स्वार तरी खान पान सोदे सुख पुंचत संकट काट विपत हरी मात पिता भाई अर बंदप बूजन की सब सूज परी वर्धमान होवत दिन प्रतनित आवत निकट बिखम जरी रे गुणहीन दीन माया क्रम सिमर स्वा

0: अंग न को दृष्ट निहारो, कोट न ओट ना कोस न छोटा, करत विकार दौ कर चार हो, मित्र न पुत्र कलतर सा जन सख, उल्टत जात बिरख की छार हो, दीन दयाल पुरख प्रभ पूरन, छिन छिन सिमर हो अगम अपारो, श्री पत नाथ शरण नानक जन, हे भगवंत कृपा कर तार हो, श्री पत नाथ शरण नानक जन, हे भगवंत कृपा कर तार हो।
1: प्राण मान दान मग जोहन, हित चीत दे ले ले पारी, साजन सैन मीत

निसर रसक रसक ठाकुर गुण गावत इंद्र मुनिंद्र खोजते गोरख तरन गगन आवत फुन तावत सिद्ध मनुख्य देव अरदानव इक तिल ताको मरम न पावत प्रिय प्रभ प्रीत प्रेम।

0: नानक दास तुझे समझावत।
1: माया रंग बिरंग करत प्रम, मोहके कूप गुबार परयो है। एता गब आकाश न मावत, बिस्ता अस्त किरम उदर परयो है। दै दिसताए महा बिखिया को, पर तन छीन अज्ञान हरयो है। जोबन बीत जरा रोग ग्रस्यो, जम दूतन डंद मृत मरयो है। अनिक जोन संकट नरक पुंचत, शासन दुख गर्त गरयो है। प्रेम भगत उदरै से नानक, कर कृपा संत आप करयो है। गुण समूह फल सगल मनोरथ, पूरन होई आस हमारी। औखद मंत्र तंत्र पर दुख हर, सर्व रोग खंडन गुणकारी। काम क्रोध मद मत्सत तृष्णा, बिनस जाए हर नाम उचारी। इशनान दान तापन सुच किरिया, चरण कमल हृदय।

0: साजन मीत सखा हर बंदप जी तान प्रभ प्राण अदारी ओट गई स्वामी समरथ नानक दास सदा बलिहारी।
1: आवद

जबलोनी भाग लीला रुदे तबलो भ्रमते फिरते बोतायो कल कोट समुंदर मैं बोडत थे कबहू मटह नीरे पछतायो तत् विचार ये मथुरा जगतारण को अवतार बनायो।

0: फिर संकट जान गर्भ ना आयो।
1: प्रभ दातो दातार परयो जाचक इक सरना, मिले दान संत रेन जेह लग पौ जल तरना। बिनत करहो अरदास सुनो जे ठाकुर पावे, देहो दरस मन चाओ भगत

कौहु नानक तिन खनियै वन्या, जिन घट मेरा हर प्रभ वूठा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दीन दुनिया दे मालक सरबे कायनात दे सांझे रहबर, जुगो जुग अटल चवर शतर तख्त, तथा वक्त दे मालक हाजरा हजूर जहरा जहूर समरथ गुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाए मान साध संगत जी, वडभागे हो जो अमृत वेले दे दीवाना अंदर हाजरियां भर के अपना जीवन सफल कर रहे हो। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी का अज का पावन मुखवाक वडहंस राग अंदर पंजवें पातशाह शहीदां दे सरताज साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज बख्शिश करते ने, जो सतगुरु जी की बाणी पावन अंग 577 अते 578 उपर सुभाए मान ने सतगुरु जी कृपा करन अपने हुक्म अनुसार जीवन ज्यों दी समर्था सूझ बख्शन जी। आओ अज दे ए पावन बचन अपने हिरदे अंदर वसाउण दा यतन करिए।

में थक आए प्रभ की शाम। तीन दुदैते बाहरी कित नया वै काम, जल बिन शाख कुमलावती उपजै नाही दाम। हर ना न मिलिए साजने कत पाइए विश्राम। जित कार हर कंतना प्रगटई पाठ नगर से ग्राम। श्रब सिंगार तंबोल रस सण देही सब खाम। प्रभ स्वामी कंत विहुणिया मीत सजण सब जाम। नानक की बेनतिया कर कृपा दीजै नाम। हर मेलो स्वामी संग प्रभ जिसका ने चल ताम। नानक की बेनतिया कर कृपा दीजै नाम। हर मेलो स्वामी संग प्रभ जिसका ने चलताम। सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। बारह माह माज महला पंजवा कर चौथा एक ओंकार सत गुर प्रसाद। असुन प्रेम उमाहड़ा क्यों मिलिए हर जाए। मन तन प्यास दर्शन कणी कोई आन मिलावे माए। असुन प्रेम उमाहड़ा

जिन्ना मया हर राय वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बारह माह माज महला पंजवा घर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद असुन प्रेम उमाहड़ा क्यों मिलिए हर जाए मन तन प्यास दर्शन घणी कोई अण मिलावे माए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।